0: शांति आराधना र उपहारका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती नेपालको पहिलो ISO सर्टिफाइड अगरबत्ती कम्पनी।
1: कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती पवित्र सुवास।
2: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो।
3: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
2: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं।
4: जेजे ज्वेलर्स
5: प्रस्तुत छ। जेजे ज्वेलर्स, जेजे ज्वेलर्समा छ सुन चाँदी तथा हीरा का आकर्षक डिजाइनहरुको उत्कृष्ट कलेक्शन। सुन चाँदी तथा हीरा जे किन्नुस जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुस।
6: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक मुनि।
7: संपर्क नंबर 5320411 9802076888।
5: जेजे ज्वेलर्स शुद्धता को पहचान।
8: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु हुने महानुभावर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सकूने।

कार्यक्रम भजन दीपाञ्जली प्रत्येक सोमबार सुमधुर भजन का साथ में बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। यस कार्यक्रम का प्रायोजक उच्च स्तरीय प्रविधि द्वारा स्वदेशमै निर्मित चाँदी का हर एक प्रकार का सामग्री का लागि प्रसिद्ध सिल्वर स्टेट धर्मपथ न्यू रोड काठमाडौँ। कार्यक्रम भजनांजलि प्रत्येक मंगलवार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। प्रत्येक मंगलवार बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सर्व मांगलिक कामना का साथमा कार्यक्रम सर्व मंगलम सुन्न सक्नुहुनेछ केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रमहरू प्रायोजन गर्न अथवा यहाँको सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन गर्न चाहनुहुने महानुभावहरूले 9841289820 मोबाइल नम्बर 9841289820 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।

साँझ 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म सुमधुर भजनहरूको सन्ध्या कार्यक्रम भक्ति सन्ध्या सुन्न सक्नुहुनेछ केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगा।

सातवा कार्यक्रम भजन दीपांजलि। यस कार्यक्रम का प्रायोजक उच्च स्तरीय प्रविधि द्वारा स्वदेश में निर्मित चांदी का हर एक प्रकार का सामग्री का लागि प्रसिद्ध सिल्वर स्टेज धर्मपथ न्यू रोड काठमांडू।

आंखों पे भरोसा मत कर, दुनिया जादू का खेल है। हर चीज यहाँ एक धोखा, हर बात यहाँ बेमेल है।

राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: वेलकम टू सिस्टर टेलरिंग
2: रेडी मीडिया शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
3: वो मलाई फ्रॉक
4: मलाई पनी सूट
5: वो
6: अनि मलाई

0: சாவேல் சுச்சேபாட்டி.
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ.

0: भोलि त्यहाँ त फिल्म हेर्दाखेरि भोलि मानौ न
1: मिति गङ्गुदी मङ्स

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सकूने।

0: गोल्ड पैलेस सुक्रपत न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: FM AJ 104.8 MHz।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: गोल्ड प्यालेस, सुक्रपथ न्यू रोड काठमाडौँ, फोन नम्बर 42 43 736।
1: श्रेष्ठ टेलरिङ,
2: चिर परिचय यहाँ। श्रेष

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई सदैव।
1: FM अध्यात्म ज्योति, शांति रेडियो।

भगवान शिव को ब्रह्म ज्ञान तथा ध्यान में लीन देखकर नारद मुनि के मन में भी ब्रह्म के समान बनने की इच्छा जागृत हुई। वे शिव के समान ब्रह्म बनने के लिए तपस्या प्रारंभ करते हैं। तपस्या में लीन नारद की ओमकार ध्वनि इंद्रलोक तक पहुंचती है, जिसके कारण अप्सराओं का नृत्य थम जाता है। नारद की तपस्या कहीं सफल न हो जाए, वे इंद्रासन पर अधिकार न कर लें, इस भय से इंद्रदेव वरुण पवन अग्निदेव को उनका तप भंग करने के लिए भेजते हैं। पवन अग्नि वरुण देव के प्रकोपों का नारद पर कोई प्रभाव नहीं होता। प्रसन्न नारद अहम् ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ब्रह्म हूं इस प्रकार का अभिमान व्यक्त करते हुए कैलाश पहुंचते हैं। अभिमानी नारद को देखते ही शिव निश्चय कर लेते हैं कि नारद का मिथ्याभिमान दूर करने का कोई उपाय करना होगा। अहम् ब्रह्मास्मि की धुन जगाते हुए नारद कैलाश से ब्रह्मलोक पहुंचते हैं। ब्रह्मा भी उनकी धुन सुनकर चकित होते हैं। ब्रह्मलोक से नारद भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं। शिवजी ने उन्हें विष्णु के पास जाने से मना किया था। नारद का मिथ्याभिमान भंग करने के लिए शिव शंकर भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं तथा उनसे अनुरोध करते हैं कि वे नारद का भ्रम दूर करने के लिए अपनी लीला आरंभ करें। शिवाज्ञा पाकर श्रीहरि एक माया नगरी तथा माया सुंदरी श्रीमती की रचना करते हैं। विश्व भ्रमण करते हुए नारद उस माया जाल में फंसकर सुंदरी श्रीमती के प्रति आसक्त हो जाते हैं। नारद मुनि श्रीमती के पिता महाराज शील निधि के पास पहुंचकर श्रीमती को पाने की इच्छा व्यक्त करते हैं। शील निधि उन्हें श्रीमती के स्वयंवर में आमंत्रित करते हैं।

उपस्थित पराक्रमी वीरों, राजा एवं राजकुमारों, हम महाराज शील निधि की ओर से आपका स्वागत करते हुए ये घोषणा करते हैं कि महाराज शील निधि की राजकन्या श्रीमती स्वयंवर शाला में पधारकर अपने इच्छित वर को वरमाला पहनाएंगी। आप अपने अपने सौभाग्य की प्रतीक्षा करें। राजकुमारी श्रीमती स्वयंवर शाला में पधार रही हैं।

0: राजकुमारी श्रीमती की
1: जय।
0: राजकुमारी श्रीमती की
1: जय।
0: राजकुमारी श्रीमती की
1: जय।
2: हम धन्य हुए महाराज, राजकुमारी ने अपने योग्य वर को वरमाला पहनाई।
3: मूर्ख है ये, इसे सौंदर्य की परख नहीं, मेरे सौंदर्य की उपेक्षा की है, इसने पश्चाताप करेगी।
4: अब हमें क्या करना होगा भृंगी?
5: भूल गए श्रृंगी, रघु ने क्या कहा था? समय आने पर हमें नारद को सत्य का ज्ञान कराना है। ध्यान आया? चलें।
3: मूर्खो, हंसते क्यों हो?
6: आइए आप स्वयं अपना सौंदर्य देख लीजिए। आइए देखिए।
7: देख लिया अपना सुंदर मुख?
4: मेरा मुख वानर का?
6: स्वयंवर में आने से पहले दर्पण में अपना मुख तो देख लिया होता।
3: दूर कुलबुद्धि ब्राह्मणों, इस कपट कार्य में नारायण के साथ तुम दोनों भी दोषी हो। तुम दोनों ने जानबूझकर मुझसे इस छत्ते को छिपाया है। मैं तुम दोनों को शाप देता हूँ, तुम दोनों उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के पश्चात भी राक्षस कहलाओगे।
5: देवर्षि, हमें क्षमा कर दीजिए, हम निर्दोष हैं।
3: चुप रहो, अब मेरे प्रकोप से नारायण भी नहीं बचेंगे। उन्होंने मुझसे छल किया है, मैंने उनसे उनके समान रूप मांगा था, उन्होंने मुझे वानर का रूप दिया। मेरे ब्रह्म ज्ञान से उन्हें ईर्ष्या हो रही है, उन्हें इसका दंड भोगना पड़ेगा।
8: कहाँ है नारायण? नारायण, नारायण कहाँ है नारायण?
9: स्वामी
8: नारायण,
9: देवर्षि नारद
8: नारायण।
10: हाँ देवी,
8: कहाँ है नारायण? नारायण, नारायण कहाँ है आप?
3: वैकुंठनाथ कहाँ है? कहाँ है आप? कहाँ है? कहाँ?

0: मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं मुनिवर।
1: आपने अपने ही भक्त के साथ भयंकर छल किया है, वानर का रूप देकर मेरा अपमान किया है। मैं श्राप देता हूं कि आप भी मनुष्य का रूप धारण करके स्त्री के वियोग में तड़पेंगे, मन मन भटकेंगे।
2: ये आपने क्या किया मुनिवर? प्रभु को श्राप दे दिया?
0: देवी, मैंने नारद जी का श्राप सहज स्वीकार किया है। विधि का विधान सुनिश्चित है। जगत कल्याण के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश को भांति भांति की लीलाएं करनी पड़ती हैं। हमारी इस लीला में भी आने वाले त्रेता युग का एक संकेत है। देवी, मैं संतुष्ट हूं कि शिव इच्छा का पालन हुआ है।
1: प्रभु, आपने शिव शंकर की इच्छा से माया रची थी?
0: हां मुनिवर।
1: मुझसे भयंकर भूल हो गई प्रभु, मैंने अज्ञानवश आपको श्राप दे दिया। अपने पति भ्रष्ट भक्त को क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए।
0: उठिए देवर्षि नारद, पश्चाताप नहीं, मन की शांति के लिए शिव शंकर की आराधना कीजिए।
1: मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु।

0: Rahimah, Rahimah. Rahimah, Bholenath, Bholen Shankar, mujhe kshama kar dijiye, apne tujh bhakt ko kshama kar dijiye.
1: Utho Narayan,
0: moh mein padkar maine bhayankar anarth kar diya prabhu.
1: Is anarth mein महान अर्थ है नारद.
0: मैं मति भ्रष्ट हो गया था. श्रृंगी भंगी के साथ साथ स्वयं नारायण को भी श्राप दे दिया. मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर.
1: चिंता ना करो नारद, तुम्हारा यह श्राप आवश्यक था. त्रेता युग में घटने वाली महान घटनाओं का सूत्रपात तुम्हारे मुख से हुआ है
0: प्रभु.
1: हां नारद, त्रेता युग में श्रृंगी भृंगी विशर्वा मुनि के प्रतापी पुत्र रावण तथा कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेंगे. मेरे भक्त होकर भी राक्षस जैसा कर्म करेंगे.
0: प्रभु,
1: भगवान विष्णु दशरथ नंदन श्री राम का अवतार लेंगे तथा माता लक्ष्मी सीता का रूप धारण करके इन दोनों का उद्धार करेंगी. मेरी ही प्रेरणा से नारायण ने यह माया रची थी. अस्तु, इस घटना में मैं भी बराबर का दोषी हूं. आप ही के रूप में मैं वानर रूप धारण करके भगवान विष्णु की सेवा करूंगा.
2: धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं. तीनों लोक में आपकी लीला कोई नहीं जान सकता. आपने मेरे भ्रम दूर करके मेरे सारे अपराध क्षमा कर दिए. जय शिव शंकर. भोलेनाथ भक्त की आड़ लेकर ये कैसी कैसी लीलाएं रचाते हैं प्रभु. बोलो भगवान भोलेनाथ की.

0: जय शिव शंकर,
1: जय शिव शंकर।
0: कालाय तस्मै नमः। महाकालेश्वर भगवान भोलेनाथ की
1: जय।
2: गुरुदेव, भगवान भोलेनाथ को महाकालेश्वर क्यों कहते हैं?
0: भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भी एक कथा है। उज्जैनी नगरी में भगवान शिव महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है।
3: गुरुदेव, उस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग क्यों पड़ा?
0: भगवान शिव संहार के देवता हैं, वे काल के भी काल हैं, इसलिए महाकाल कहलाते हैं। इस कथा में भगवान शिव महाकाल तथा भक्तवत्सल दोनों रूप में प्रकट हुए हैं।
2: गुरुदेव, आज हमें भगवान शिव के इन दोनों रूपों की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए।
0: उज्जैनी नगरी में दो परम शिव भक्त थे। एक थे धर्मात्मा ब्राह्मण वेद प्रिय और दूसरा था गोप बालक श्रीकर। वेद प्रिय अपने 4 पुत्रों के साथ सदा शिव भक्ति में लीन रहा करते थे। एक दिन अबोध बालक श्रीकर वेद प्रिय की भक्ति से प्रेरित होकर मन ही मन शिव भक्ति में समर्पित हो गया। श्रीकर की यह निष्ठापूर्ण भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव शंकर ने श्रीकर का रूप धारण करके उसके माता पिता की सेवा की। अपने इन्हीं भक्तों का संकट दूर करने के लिए भगवान श्री शिव शंकर ने महाकाल का रूप धारण किया।
4: शिव भक्तों पर क्या संकट आया था गुरुदेव?
0: उनके संकट का कारण था दूषण नामक एक राक्षस। एक समय की बात है, दूषण राक्षस ने काल विजेता बनने के लिए घोर तपस्या आरंभ की।

ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय

0: ब्रह्मदेवाय नमः ओम ब्रह्मदेवाय नमः ओम ब्रह्मदेवाय नमः।
1: असुरराज दूषण, आंखें खोलो, आंखें खोलो असुरराज, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं।
0: ओम ब्रह्मदेवाय नमः।

0: ब्रह्मदेव, मेरे आराध्य, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ प्रभु, मैं धन्य हुआ।
1: वर मांगो असुरराज।
0: मुझे अमर कर दीजिए प्रभु।
1: असुरराज, जन्म के समय ही मृत्यु की तिथि निश्चित हो जाती है, उसे बदलना मेरे बस में नहीं है।
0: तात्पर्य, आप मुझे इच्छित वर नहीं देंगे?
1: अवश्य दूंगा। तुम्हें भी एक वचन देना होगा।
0: क्या?
1: शिव भक्तों पर तुम कभी अत्याचार नहीं करोगे।
0: मैं वचन देता हूं।
1: मैं भी तुम्हें वरदान देता हूं, देवता दानव मानव तुम्हें नहीं मार सकेंगे। आज से तुम काल विजेता हो, परंतु ध्यान रहे, शिव भक्तों पर अत्याचार करोगे तो तुम्हारा विनाश निश्चित है।

0: मैं अपने राज्य में किसी को भी शिव भक्ति नहीं करने दूंगा। इस समय मेरा लक्ष्य मेरा कपटी भाई भूषण है।
1: असुर सम्राट भूषण की, असुर सम्राट भूषण की, असुर सम्राट भूषण की।
0: बंद करो ये जय जयकार, इस नीच भूषण की जय जयकार। आज से तुम्हें असुर राज दूषण की जय जयकार करनी होगी।
2: आ गए मरने दूषण भैया, बड़े निर्लज्ज हो। पहले किसी प्रकार प्राण बचाकर भाग गए, अब तुम्हें जीवित छोड़ने की भूल नहीं करूंगा।
0: अरे ओ कायर, दूर से क्या गाल बजा रहा है, आ और मेरा सामना कर।
2: नहीं, ये कायरता है, एक के साथ एक ही लड़ेगा, इसने मेरी शक्ति को चुनौती दी है।
0: भूषण, मैं तुझे युद्ध का आमंत्रण देता हूँ, आ और मुझसे युद्ध कर।
2: मुझे आमंत्रण स्वीकार है,

0: वाले भूषण के साथियों, जो भी मेरे विरुद्ध सर उठाएगा उसका मस्तक धर से अलग कर दिया जाएगा। मैं ब्रह्मा जी का वरदान पाकर काल विजेता बन गया हूं। क्या बन गया हूं?
1: काल विजेता।
0: गांव गांव नगर नगर जाकर घोषणा करवा दो, आज के हमारे राज्य में हमारे अतिरिक्त किसी की पूजा आराधना नहीं होगी। हर कोई राक्षस राज दूषण की जय जयकार करे, ये हमारा आदेश है। जो कोई भी हमारे आदेश का उल्लंघन करेगा उसको कड़ा दंड दिया जाएगा।
2: राक्षस सम्राट महाराज दूषण की जय। राक्षस सम्राट महाराज दूषण की जय।

0: माँ वो लोग क्या कर रहे हैं?
1: क्षत्रिय ब्राह्मण और उनके बेटे पूजा कर रहे हैं।
0: किसकी पूजा माँ?
2: शिव बाबा की।
0: चलो तनिक देखें।
3: नमः शिवाय, ओम नमः।
0: चलो ना माँ, चलो।
1: रुकना,
0: चलो।

0: क्यों माँ, ये जो माटी की पिंडी पर बेलपत्र फूल चढ़ाया गया है, क्या यही है शिव बाबा?
1: हाँ बेटा, शिव जी पर बेलपत्र चढ़ा करके ही पूजा की जाती है।
0: फिर मैं भी पूजा करूँगा।
1: ए बिटवा, हमार खोपड़ी मत खाओ। हमारा काम है गाय भैंस पालना, दूध दही बेचना। हम ग्वाले हैं, पूजा पाठ तो ब्राह्मणों का काम होता है, हमारा नहीं।
2: ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
0: क्यों माँ, ब्राह्मणों के भगवान दूसरे और हमारे भगवान दूसरे हैं? मैं भी पूजा करूँगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
2: ओम नमः शिवाय,
0: ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,

ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मिल गए, मिल गए मुझे मेरे शिव बाबा, मिल गए मुझे मेरे शिव बाबा, मिल गए।

0: यहाँ बैठो। तुम मेरे भगवान, मैं तुम्हारा भक्त। अब मैं तुम्हारी जी भर के पूजा करूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
1: आइए गौ माता, आइए आइए, चलिए। अरे गौ माता, ओए होए, ओए होए।

0: ओहो, खाइए गौ माता, हरिओम हरिओम।
1: फिकर के बापू, अरे ओ शिकर के बापू,
0: सत्यानाश।
1: अरे मैंने कहा सुनते भी हो?
0: ओहो, चिल्लाती क्यों है? मैं कोई बहरा हो गया हूँ, बोल तो सही क्या है?
1: साँझ हो गई, गाय जंगल से लौट के भी आ गई, और लड़का सवेरे से चराने गया है, अभी तक नहीं लौटा।
0: अरे वो आता ही होगा, अभी और चरवाहे भी तो नहीं लौटे, आता ही होगा। अरे काहे चिंता कर रही है?
1: अरे तुम बाप हो ना, तुम्हें काहे की चिंता है? मैं माँ हूँ, गौ की पीड़ा मैं ही जानती हूँ।
0: हाँ। मैं हूँ, मालूम नहीं कहाँ से मेरे भाग में आ गए।
2: पहले सुन रहे हैं FM अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: पता नहीं कहां चला गया। शिकार, ओ शिकार, शिकार, बेटा शिकार,
1: शिकार की मां,
0: शिकार, ओ बेटा शिकार। Chica! Chica!

0: ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
1: ये पत्थर दूध नहीं देगा क्या रे? साँझ हो गई, तू यहाँ पुजारी बना बैठा है।
0: ओम नमः शिवाय।
1: गाय भैंसों का भी कुछ पता है? चल घर चल, चल।
0: ओम नमः शिवाय।
1: पक्का पुजारी बन गया है, गाय बछड़े को चराना छोड़कर यहाँ पत्थर की पूजा कर रहा है।
0: ओम नमः शिवाय।
1: ओम नमः शिवाय के बच्चे, तू ऐसे नहीं मानेगा। ठहर जा, मैं ये पत्थर ही उठा करके नदी में फेंक देती हूँ।

0: हाँ सहते हो, इसके संग आग के बाद तुम लोगों को देखा तो एक एक को मार मार के लाल कर दूंगी। हंसते हैं, मुझे देखकर हंसते हैं। शिवाय बाबा अब घर चलो, वहाँ चल के उतारूंगी मैं तेरी आरती। चल
1: ओम नमः शिवाय
0: है। मैं कहती हूँ
1: नमः शिवाय,
0: मैं कहती हूँ चल भी
1: नमः शिवाय।
0: अरे चल घर चल।

0: कर दिया ललकाई, खा गौ माता खा।
1: श्रीकर, श्रीकर। अरे मैंने कहा सुनते हो, श्रीकर अभी तो सो रहा था, कहाँ गया?
0: मैंने तो उसे देखा नहीं, हो सकता है सो रहा हो देवी जी।
1: अरे श्रीकर घर में नहीं है, तुमने देखा नहीं, कहाँ गया?
0: अरे क्या कहती हो, इतने भोर में कहाँ गया होगा?
1: मैं जानती हूँ कहाँ गया होगा, पत्थर पूजने, शिव भक्ति करने। आज मैं भी उसकी शिव भक्ति का भूत उतार कर रहूंगी।
0: हाँ भगवान,

0: ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
1: ओम नमः शिवाय,
0: ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव।

0: ओम नमः शिवाय। हर हर माँ ने ये जगह देख ली है, कहीं दूसरी जगह चलकर पूजा करेंगे। माँ आ गई तो पूजा नहीं करने देंगी।
1: हाँ, हाँ, चलो, चलो।
2: अरे ओ गंगा बहन, कहीं मेरा शिखर दिखाई दिया? बता जल्दी।
3: अरे गोपा।